0: अपने घर दी, अपने पुराने घर दी, अपने बचपन वाले घर दियां यादां जो ने अज असी ताजियां कीतियां। ते अज दी कहानी राही असी यही वेख्या कि घर जो ने वो साडे बाजों कितना कितने बेजान ने, ते उना दे विच असी वापस जाके जान जरूर पांदे रहिए तां कि अपने मन नू भी हमेशा तसली रवे, अपना बचपन भी हमेशा साडे मन दे विच जो है वो ताज़ा रवे, ते असी अपने कम्मां कारां दे विच इन्ने ना रुझ जाइए कि असी अपने बचपन दियां मिठियां यादां नू भुल जाइए, असी अपने बचपन दियां सोहणियां यादां नू कदे फरोल ही ना सकीए। ते उम्मीद करांगे थोनू अज दी कहानी पसंद आई होवेगी। तुसी अपना फीडबैक जरूर सानू दंदे रहना। प्रोग्राम सुनहरी शाम रेडियो दे फेसबुक पेज सुनहरी शाम रेडियो नू तुसी लाइक फॉलो करना, ते अपने दोस्तां मित्रां नू अपने रिलेटिव्स नू जरूर दसना, ते वध तों वध जो जिन्ना तुसी साडे नाल जुड़ोगे उन्ना वध तों वध साडा हौसला जो है होर वधेगा। ते इस दे नाल ही साडे स्पोंसर्स दा वी तुसी खास ध्यान रखना, क्योंकि प्रोग्राम कोई भी हुंदा उस दे विच स्पोंसर्स दा बहुत बड़ा रोल हुंदा उस दी होंद बनाउण दे विच, ते साडे सारे ही स्पोंसर्स थोनू सर्विसेज देण दे विच हमेशा तैयार रहिंदे ने। ते इस वेले साडे नाल लाइन ते बिल्कुल तैयार बर तैयार ने जसपिंदर कौर तग्गर जी, थोनू इंश्योरेंस दी अपडेट्स देण लई। इंश्योरेंस करवाउणी अपनी जिंदगी दे विच बहुत जरूरी है ताकि स्ट्रेस फ्री जिंदगी जो है असी जी सकीए, ते नाल ही कोई भी जदों औखा वेला आया ते परिवार नू मुश्किल दी घड़ी ना वेखणी पवे। ते नंबर तुसी जसविंदर जी लई याद रखने, नंबर 647-765-23-40 6477652340 जी। वेलकम करदे आं प्रोग्राम दे विच, सत श्री अकाल
1: जी। रविंदर जी सत श्री अकाल, ते सत श्री अकाल साडे सारे ही श्रोतियां नूं जी।
0: जी जी मैम, ते अज दे की अपडेट्स ने
1: जी? बिल्कुल जी, मैं अज थानू थोड़ा जा सुपर वीजा इंश्योरेंस बारे दसना चाहांगी कि जेकर थोड़े पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स कैनेडा आ रहे हैं तो उन्होंने सुपर वीजा इंश्योरेंस लेनी जरूरी हुंदी है। एक साल लई 1 लाख दी इंश्योरेंस लेनी जरूरी हुंदी है। एनुअल अते मंथली प्लान्स अवेलेबल हुंदे हन
0: जी।
1: 45% तक दा डिस्काउंट मिल सकदा है। जेकर बाय चांस थोड़ा वीजा डिनाय हो जांदा है
0: तां
1: 100% फंड मिल जांदा है। असी सारी मेजर कंपनीज जिहड़ियां कैनेडियन कंपनीज हन
0: उहनां
1: नाल डील करदे हां, इस लई थानू बेस्ट रेट लैके दे सकदे हां। इस तों इलावा जो विजिटर्स इत्थे आए हुए हन जी कैनेडा दे विच, जां इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जां वर्क परमिट होल्डर हन जिन्हां कोल हेल्थ कार्ड नहीं है, सो उहनां नू जरूर अपनी एमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस लैनी चाहीदी है तां कि कोई भी एमरजेंसी आ जावे, हॉस्पिटलाइज होना पवे तां उहनां खर्चे की चिंता ना हो, क्योंकि जो हॉस्पिटलाइज असी हुंदे आ तो बहुत वड्डा बिल जिहड़ा बन जांदा है
0: जी। बाकी
1: थोड़े ते होण वाला खर्चा जिहड़ा कंपनी फिर थानू पे करदी है जेकर तुसी अपनी एमरजेंसी मेडिकल इंश्योरेंस लई हुई है। जेकर कोई 25 साल तक दा व्यक्ति $50,000 दी कवरेज लैंदा है
0: तां
1: सिर्फ ओनू मंथली $51 पे करने पैंदे हन। सो ए कोई महंगा इंश्योरेंस नहीं हैगी, महंगी इंश्योरेंस नहीं है,
0: बड़ी
1: रीजनेबल रेट ते इंश्योरेंस हुंदी है, सो सानू जरूर कवरेज इह लैनी चाहीदी है। ते इस दे नाल ही लाइफ इंश्योरेंस भी बड़ी सस्ती हुंदी है, जिहड़े साडे स्टूडेंट्स
0: इत्थे
1: आए हुए है, 20 to 30 साल तक दा जे कोई व्यक्ति हैगा तां 1 लाख दी लाइफ इंश्योरेंस केवल $12 दे विच थानू मिल जांदी है। तो जिहड़े सेल्फ एम्पलॉयड है जे उन्होंने डिसेबिलिटी इंश्योरेंस लेनी है तां मंथली $31 ओ पे करके $2,000 तक दी मंथली बेनिफिट लई ओ एलिजिबल हुंदे हन 2 साल तक। तो जिहड़ियां भी इंश्योरेंस हैगियां, चाहे लाइफ इंश्योरेंस है, डिसेबिलिटी क्रिटिकल इंश्योरेंस या मॉर्गेज इंश्योरेंस तुसी लेनी है, या विजिटर इंश्योरेंस या सुपर वीजा इंश्योरेंस
0: जी,
1: ते हुण RRSP दा सीजन है जी, तुसी टैक्स अपना सेव कर सकदे हो, RRSP अकाउंट खुलवा के
0: उहदे
1: बारे भी जानकारी मेरे तों लई जा सकदी है। असी ऑफिस च बह के अपॉइंटमेंट बना के भी गलबात कर सकदे हां। ऑफिस अपना मैकलॉगलन ते क्वीन दे बिल्कुल लागे है,
0: तुसी
1: मेरे नाल गलबात कर सकदे हो जी। मेरा नंबर कर लो नोट, 6477652340 6477653240। रुपिंदर जी थैंक यू सो मच
0: जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। जदों भी आपां कोई घर खरीदना हुंदा, लैणा हुंदा, इन्वेस्टमेंट करनी हुंदी, ते तीन चीजां दा बहुत सानू ख्याल रखना चाहीदा। पहला की फेस जरूरी आ, ਦੂਜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਅੱਛੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੀਜਾ ਜੋ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੰਬੀ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਹੋਵੇ। ਤੇ GTA ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਲਵੰਤ ਪੰਗੂ ਜੀ ਰੀਅਲ ਟਰਮ ਰਿਐਲਿਟੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਕੌਂਡੋਜ਼ ਅਤੇ ਟਾਊਨਸ ਮਾਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਨੰਬਰ 647-680 ਤੇ 7335 ਤੇ 6476807335 ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਲਡ ਟਾਊਨ ਹੋਮਸ ਕੋਲਿੰਗਵੁੱਡ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਤੇ ਨੰਬਰ 647-680 ਤੇ 7335 ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਕਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਲਓ।

0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6 7 7 2
1: लाइसेंस नंबर
2: 10394। तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है, चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी। बिल्कुल ना भूलिया जे, लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नूं, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नूं 6474461616। उमरप्रीत चावला

0: क्या बात है, बड़े शानदार गीत संगीत जो सुनते सी ना पहला भी, ये गीत हुण भी बड़ा वधिया लगता है। मलकीत सिंह जी की गायकी डीजे वाला काम नचण वाले गीत हुंदे आ, ते कई गीत वो आप ही लिखते हैं। कहिंदे जिहड़ा बंदा आप लिखे तो आप गावे ना, उहदा एक वक्खरा ही अंदाज बन जाता, एक वक्खरी ही बंदे नूं वो चीज़ पसंद आती है। चलते एक बार फिर जुड़ चुके ने उमरप्रीत चावला जी। उमरप्रीत जी वेलकम बैक।
1: थैंक यू सो मच सरबजीत जी। सो आपां पहले प्रीमेच्योर डेथ की गल की है, प्रीमेच्योर डेथ के रिस्क नूं कवर करन लई टर्म इंश्योरेंस बेस्ट ऑप्शन है। 10 to 40 साल तक की आपां टर्म लै सकते हैं। जे तुसीं यंग हो 10 साल की टर्म $12-15 के विच प्लान स्टार्ट हो जाते हैं, या फिर तुसीं उस लाइफ के उस फेज के विच हो जिथे थोड़े एसेट्स बने हुए हैं, कैपिटल गेन टैक्सेज कल नूं पे करने पैने हैं और तुसीं नहीं चाहते कि थोड़ा कोई एसेट वेच के कल नूं बच्चों नूं टैक्सेज पे करने पैण, सो उहदा अरेंजमेंट आपां अज कर सकते होंगे। सो नंबर है जी मेरा 6474461616। अल्बर्टा, बीसी, मैनिटोबा, सस्कैचवान, नोवा स्कोशिया या ओंटारियो, इन्हां चो किसी भी प्रोविंस तुसी हो, थोड़े फैमिली कोई फ्रेंड्स इन्हां प्रोविंस च है, तुसी नंबर शेयर कर सकते हो। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरह की इंश्योरेंस नूं लैके, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस है, क्रिटिकल इलनेस है, डिसेबिलिटी, तिना का तुसी कॉम्बो पैक लैना जो $99 के आप डिजाइन कर सकते होंगे। अपनिया मॉर्गेजेस नूं कवर करना है मॉर्गेज इंश्योरेंस दे नाल, या किसी भी तरह दियां इन्वेस्टमेंट्स की गल करनी है, RRSP, RESP, TFSA, FHSA या रजिस्टर्ड डिसेबिलिटी सेविंग प्लान जिसे 90,000 तक की गवर्नमेंट ग्रांट ली तुसी एलिजिबल हो सकते हो, या घर च कोई भी बच्चा भी स्पेशल नीड्स आपां उहदे लिए प्लान कर सकते होंगे, या तुसी पेरेंट्स नूं स्पॉन्सर करना है, सुपरविजा इंश्योरेंस की कोटेशन लैनी है, कोई विजिटर आ रहा है, या तुसी किते ट्रैवल करना है, तुसी फैमिली नाल फ्रेंड्स एक ग्रुप जा रहे हैं, तो बहुत वधिया डिस्काउंटेड रेट से आप ट्रैवल इंश्योरेंस कर सकते होंगे। सो वैबसाइट है जी मेरी uchavla.com ते नंबर अगेन 6474461616 4416. थैंक यू सो मच सरबजीत जी।
0: बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया। 6474461616 4416 1616 ते तुसी जरूर गलबात कर सकते हो उमरप्रीत चावला जी नाल। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
1: थैंक यू जी,
0: थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोग्राम सर्ब रेडियो ते नाल दे नाल किसे ने भी अपने बिजनेस नूं तुसी प्रमोट करवाना चाह रहे हो, शनिवार 9 to 10 AM 5:30 ते बड़े ही शानदार रीजनेबल ते अफोर्डेबल पैकेज तुहानू मिलणगे। तुसी सानू रीच आउट कर सकते हो, गलबात कर सकते हो, राबता बना सकते हो 6474704 54 ते 6477706454 6477706454 ते जरूर आपां गलबात कर सकते हैं साडी टीम दे नाल। ते किसे ने भी हुण विआह प्रोग्राम बड़ा कुछ चलदा हुंदा, ते तुसी लेडीज़ करके खास करके लहंगे प्लाजो पजामी लोंग ड्रैसिज तुसी लैनी चाह रहे हो, ते सुख डिजाइनर ब्यूटीक दा नंबर तुसी जरूर नोट करो, याद रखो, बड़े शानदार डिजाइनर वेयर कपड़े तुहानू मिलणगे। SUKH सुख .designer.boutique तुसी टिकटॉक ते जाके वीडियोस देखो, कलैक्शन देखो, बड़े तुसी अमेज हो गए, बड़े तुसी तुहानू वधिया लगणगे। जा कॉल कर सकते हो 6472033365 ते थोड़ी जी गलबात आपां जरूर करदे आं। साडे नाल जुड़ चुके ने मयंक पटनागर जी।
2: ਭਾਅ ਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਲੈਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਟਾਂਗੜ ਅਤੇ GNA ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਸਲਾਮ ਅਤੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਕਹਿਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਜੀ। ਅਤੇ ਭਾਅ ਜੀ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੀਡ ਪੈ ਰਹੀ ਆ
0: ਜੀ।
2: ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਸ ਹੁਣ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰੀਫਾਈਨੈਂਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਯੂਨਿਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ
0: ਜੀ। ਜੀ ਜੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਤੇ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮਯੰਕ ਪਟਨਾਗਰ ਜੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੋਟ ਰੱਖੋ, 6474704 54 ਤੇ 6477022023 ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ 6477022023 ਤੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ
2: ਹਾਂ। ਲਿਮਿਟ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨ ਤੇ
0: ਜੀ।
2: ਇੰਟਰਸਟ ਰੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਐਸ ਲੋ ਐਸ 4.99 ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ 5.99 ਤੇ ਐਸ ਲੋਂਗ ਐਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਮਿਨੀਮਮ 680 ਹੈਗੀਆਂ।
0: ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 647-2023 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੈਂਡਲ ਹੈ SARB, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਾਈਕ ਫੋਲੋ ਅਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਰਬ ਰੇਡੀਓ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10 ਤੋਂ 11 ਮੇਰਾ ਜੀ ਅਤੇ 11 ਤੋਂ 12 ਚਮਕੌਰ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੰਗ ਰੇਡੀਓ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੀ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਸੇਮ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਮਿਲਾਂਗੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ ਖਿਆਲ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।

विलियम्स पार्क में मैं मौजूद गोडम गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपके स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5333 कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।

0: simtan ko si kon sukdiyo chatran ko pat ko badtiyo kat kat ke tan dil chaat pane pure ki teer pachan chidi de kon chare as tulo sapar ki pa drishti kar kulo santan dukh paaye te dukhi sukh paaye saath ki dil sukhi ek ek ke teer pachan
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में आपको कार की रिपेयर करवानी है विंटराइज करवाना है नए टायर लगवाने हैं या फिर आप अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे कहां पे योगीज ऑटो सेंटर तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-6464 योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं ऑयल चेंज करवाना है तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट

0: ईश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलंबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राहि मां शरणागतम त्रैलोक्य हृदयं शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि मां शरणागतम चिदग्रीमंडल संभूता राज्य वैभव कारिणी प्रकटी ताम सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवम त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्वत्सलोहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृती पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम् श्री कुलदेव्याचरण अर्पणम् अस्तु
1: सारे का मकान
0: श्री दुर्गा शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्व कार्य विधायिनी करो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यन्नरः।

0: exam, eyeglasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses, to visit easy and
1: चाहिए
0: आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 स्पीडर्स का टीपी पर कॉल कीजिए 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस।

0: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं, हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है. सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद. अब आपके लिए ये जो वीकेंड है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आपके लिए अभी बच्चे आपके स्कूल चले गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई हो. जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बारी गए हैं स्कूल, उनको भी बहुत सारी बधाई हो. तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा. तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर कुछ भी लेके आना चाहते हो, और जहाँ फिर आपने अपने घर में बढ़िया टीवी लेके आना है, किचन की गैजेट लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा उनके पास उनकी स्पेशल देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर. और उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में. तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो, फिर उनके ऑर्डर बुक करने के लिए आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए 905-799-0045. अब हमारे लिए जो महाउत्सव सीजन है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 13 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. तो आपको कोई भी पूजा का सामान लेना है तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट आपके लिए मैलनी ड्राइव पे मौजूद है ब्रैम्पटन में. अब हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप. इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5000 तों लैके $1,00,000 तक. ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन. जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी. ते जे तुहानू नवे टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू. ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM 530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM 530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ 500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਕਲਿਫ ਆਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ. कॉल करो 362-384-3840. दोबारा सुनो 365-384-3840. 362-384-3840. बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स. जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में. तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिए, कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं. तो आप एक बार उनको कॉल कीजिए 416-524-8404-1652-46704. तो HK मूवर्स. अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू में, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड 519-546-1265-19. 546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान बढ़िया प्राइसेस पे मिलता है। इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे उनकी एक लोकेशन है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गोल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक डॉट कॉम पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा। 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045। या तो आप सुन रहे प्रोग्राम घर से साल। तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। तो लेट्स प्ले सम नाइस म्यूजिक। मैं सोच रही हूँ पंजाबी का गाना सुनाया जाए जहाँ के फिर आपको हिंदी का गाना सुनाया जाए, क्योंकि पंजाबी के गाने हम सुनाना चाह रहे थे। तो कोशिश थी कि पंजाबी का गाना आपको सुनाया जाए। जी हाँ, तो बढ़िया सा गीत आपके लिए चुनना चाहती हूँ। तो आप का वीकेंड कैसा जा रहा है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि जल्दी ही जैसे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में उसके नवरात्रे भी आ जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए फिर आपके लिए अभी जो जो गणेश उत्सव है वो 13 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप 13 से 19 तक, तो फिर बहुत जगह गणेश उत्सव के लिए फिर बहुत सारी जो
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 13 Allini Drive, Unit 9 and 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-940।
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि गणेश उत्सव, गणेश उत्सव के लिए सभी मंदिरों में बहुत बढ़िया गणेश जी का पूजा हर रोज पूजा की जाती है। और फिर गणेश विसर्जन के लिए राम मंदिर वाले बहुत बढ़िया बोट क्रूज कर रहे हैं। अगर आपको जाना है तो पहले पहले बुकिंग कर लीजिएगा, उनको कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से, लीजिए सुनिए जो पंजाबी का गाना।

अच्छा तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो ये एक रेयर सॉन्ग मैंने आपके लिए प्ले किया, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आगे भी हम आपके बहुत प्यारा आपके लिए गीत सुनाऊंगी। तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक और गाना मैंने चुना है, अब सुनाती हूँ, अभी भी आपके लिए जरूर सुनाती हूँ। तो पहले आपको हमारे जो स्पॉन्सर के मैसेज हैं, अगर आपने मूव होना है तो आप एचके मूवर्स को कॉल कीजिए, कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी पूरी मदद करते हैं। दो 416-524-8044-1652-4670 और एचके मूवर्स।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रख रही हूँ कि जो गाने मुझे पसंद है मैं प्ले कर रही हूँ, तो उम्मीद रख रही हूँ कि आपको भी ये गाने पसंद होंगे, उम्मीद रख रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो, और जो भाई बहन हमें बताते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हमिल्टन वासियों, की तुसी अपनी अगली कार लब रहे हो तां अज ही पहुंचो बीबीटी रॉकली फाटो हमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप इत्थे ही हमिल्टन विच। साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तों लैके $1,00,000 तक, ते फाइनेंस दी चिंता ना करो। इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% तो शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन। जे तुसी हमिल्टन विच लोकल रहिंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लब्भण लई पूरी कोशिश करेगी। ते जे तुहानूं नवें टायर्स दी लोड है तां ओह वी मिलणगे। 4 टायर्स दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू। हुण सुनो, AM530 लिसनर लई खास ऑफर, जदों तुसी बीबीटी रॉकलिफ आटो हमिल्टन आओ, सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 दे मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है, अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ। जी हाँ, $500 दी सीधी बचत, तां फिर देर किस गल दी। अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकलिफ आटो हमिल्टन, कॉल करो 365-384-3840। दोबारा सुनो 365-384

3840 BBT Rock Cliff out of Milton, local service, great selection, great deals. जी हाँ, तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो आइए अब आपको एक और पंजाबी का गीत सुनाती हूँ, बहुत ही प्यारा सा गीत है। सो 13 से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव चल रहा है, आपको बता दें।

0: ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਚੱਲ ਵੀ।
1: ਵੇ ਭਾਬੀ ਨਿੱਕੀਆ ਚਾਚੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਇਆ, ਚਾਚੀ ਤੇ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓਰ ਲੈ ਰਿਹਾ ਆਇਆ, ਦਿਓ ਤੇ ਉੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਤੇ ਬਣ ਕਾਲੇ ਕੋ ਦੇ ਖਾਬੇ ਨਾ ਤਾ ਵੀ ਤੇ ਖੋਕਾ ਨਹੀਂ ਤੋਟਾ ਵੀ ਨਾ ਦਿਖਾ ਦੇ ਹੋਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜੰਦੀ ਬਲਾ ਨਹੀਂ ਜੰਦੀ ਬਲਾ।
2: ਵਾਰੇ ਵਾਰੇ ਜਾਈਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੱਕਾ ਵੇਖ ਕੇ
3: तो एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये मैंने आपको सुनाया है क्योंकि इसके गाने के बहुत सारी अलग अलग वर्जन बाद में आ गए, लेकिन असली जो गाना है वो यही है जो आपने आज तो ये पुरानी फिल्म का गाना है, पुरानी फिल्म ही उसका ये गाना है पंजाबी का, और बहुत ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है। तो ये पंजाबी गाना आपने ओरिजिनल वर्जन आप सुना है, और ये फिल्म थी बड़ी पुरानी फिल्म थी, भी नाम उसका जक्के वाली फिल्म का नाम था। तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसमें आपको देखने का मिलेगा कॉस्ट्यूम कैसे थे, फिर उनकी जो बैकग्राउंड कैसे कैसे सेट की गई हैं, कमाल की फोटोग्राफी कैसे की होगी उन्होंने, लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत कुछ आपको जैसे सोचने को मिलेगा कि ये उस जमाने में उन्होंने कैसा किया होगा। 60s की मेरे ख्याल ये फिल्म है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज हो, वाशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो, बढ़िया किचन की गैजेट्स आपको चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स देख सकते हो। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो फेस्टिव सीजन में आपको अपने घर में बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आनी
0: है।
3: खास करके गणेश उत्सव शुरू हो गया तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाके और फिर अपने ऑर्डर कर लीजिए 905-799-0045-905-799-0045। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पानी सवादा भला, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय व्हाइल यू कैन, स्नो से पहले पहले आपके लिए बढ़िया मौसम अभी चला हुआ है, तो समर का एंजॉयमेंट अभी भी चल रहा है, समर चल रही है अभी भी, तो आप एंजॉय कीजिएगा। मेरा कर सकते हो 617-640, और अगर आपको प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हो 647-773-7640। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर।

कोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में अल्फा ऑप्टिकल एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, आपके स्पेशल्स देखने के लिए alphaoptical.ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5733 alpha optical, your vision is your business।

0: Everybody, sing a friend of four, sing a bonus, sing a deal. Friend of four, find a move of the deal.
1: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.

0: श्री कुलदेवी कुलाराध्या कुलेश्वरी कुल संरक्षणी माता कौलिक ज्ञान प्रकाशिनी वंदे श्री कुल पूजया कुलंबा कुल रक्षिणी वेद माता जगन माता लोक माता हितैषिणी आदि शक्ति समुद्भूता ग्राही संपूर्ण जगत विश्वबंधम महाघोरम त्राहि माम शरणागतम त्रैलोक्य हृदयम शोभे देवी त्वं परमेश्वरी भक्तानुग्रहकारिणी त्वं कुलदेवी नमोस्तुते महादेव प्रियंकारी बालानां हितकारिणी कुलवृद्धि करी माता त्राहि माम शरणागतम चिदग्री मंडल संभूता राज्य वैभव कारिणी प्रकटी ताम सुरेशानी वंदे त्वं राज गौरवम त्वदीये कुले जात है त्वामेव शरणं गत है त्वत्वत्सलोहं बाध्ये त्वं रक्ष रक्षाधुना पुत्रं देहि धनं देहि साम्राज्यं प्रदेहि मे सर्वदा अस्माकं कुले भूयाते मंगलानुशासनम् कुलाष्टकमिदं पुण्यं नित्यं यः सुकृति पठेत् तस्य वृद्धि कुले जातः प्रसन्ना परमेश्वरी कुलदेवी स्तोत्रमिदं सुपुण्यं ललितं तथा अर्पयामि भवद्भक्त्या त्राहि मगेहिनी श्री कुलदेवी स्तोत्रम् श्री कुलदेव्या च अर्पणम् अस्तु
1: सारे गामा का नाम
0: श्री दुर्गा है शिव उवाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार्य विधायिनी करो हि कार्य सिद्ध्यर्थम् उपायं रोहि यन्नरः

0: exam, eyeglasses, contact lenses, sunglasses, safety glasses. So is it
1: easier
0: चाहिए आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400 स्पीडर्स का कॉल कीजिए 905-456-2733 अल्फा ऑप्टिकल योर विजन इज योर बिजनेस.

0: अगर आप स्टोनी क्रीक में रहते हैं हैमिल्टन में, आपको कार की रिपेयर करवानी है, विंटराइज करवाना है, नए टायर लगवाने हैं, या फिर अपनी उबर की सर्टिफिकेशन ऑथोराइज करवानी है, तो आप जाइएगा योगीज ऑटो सेंटर 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट. ग्रेट सर्विस एंड ग्रेट प्राइसेस, बेस्ट प्राइसेस आपको मिलेंगी वहां पे. कहां पे? योगीज ऑटो सेंटर. तो उनकी 70-80 अपनी टैक्सीज हैं. अगर आप स्टोनी क्रीक हैमिल्टन में टैक्सी चलाना चाहते हो, या फिर आपने किसी तरह की भी उबेर की सर्टिफिकेशन करवानी है उबर की, तो आप कॉल कीजिएगा योगीज ऑटो सेंटर के हैरी को. हैरी को कॉल कीजिएगा 905-547-4444, 905-547-6464. योगीज ऑटो सेंटर आपके लिए 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट हैमिल्टन, स्टोनी क्रीक डाउनटाउन में मौजूद है. आपके लिए बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन है. तो आज ही अगर आपने अपनी कार को विंटर आने से पहले पहले नए टायर लगवाने हैं, ऑयल चेंज करवाना है, तो आज ही योगीज ऑटो सेंटर जाइएगा 1952 किंग स्ट्रीट ईस्ट.
1: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है. सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद. अब आपके लिए ये जो वीकेंड है, मौसम बहुत अच्छा है, तो आपके लिए अभी बच्चे आपके स्कूल चले गए हैं, तो आप सभी को बहुत बहुत सारी बधाई हो. जिनके बच्चे नन्हे मुन्ने बच्चे पहली बारी गए हैं स्कूल, उनको भी बहुत सारी बधाई हो. तो आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार, मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा. तो अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर कुछ भी लेके आना चाहते हो, और जहाँ फिर आपने अपने घर में बढ़िया टीवी लेके आना है, किचन की गैजेट लेटेस्ट चाहिए, आउटडोर फर्नीचर चाहिए, बारबेक्यू चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स. टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए बहुत ही बढ़िया सा उनके पास उनकी स्पेशल देखिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर. और उनकी एक लोकेशन इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन ग्वाल्फ में. तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल देखो, फिर उनके ऑर्डर बुक करने के लिए आप 905-749-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045. अब हमारे लिए जो महाउत्सव सीजन है वो शुरू हो गया है, क्योंकि 13 सितंबर से गणेश उत्सव शुरू हो रहा है. तो आपको कोई भी पूजा का सामान लेना है तो इंडिया सजावट एंड पूजा हट आपके लिए मैलनी ड्राइव पे मौजूद है ब्रैम्पटन में. अब हैमिल्टन वासियों की तुसी अपनी अगली कार लभ रहे हो तो अज ही पहुंचो बीबीटी रॉक क्लिफ ऑटो हैमिल्टन, तुहाडा अपना लोकल कार डीलरशिप. इत्थे ही हैमिल्टन विच साडे कोल हर बजट लई गड्डियां उपलब्ध हन, सिर्फ 5,000 तो लैके $1,00,000 तक. ते फाइनेंस दी चिंता ना करो, इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5.49% ते शुरू, अते हर तरह दे क्रेडिट वाले कस्टमर्स लई फाइनेंसिंग ऑप्शंस अवेलेबल हन. जे तुसी हैमिल्टन विच लोकल रहंदे हो तां साडे कोल आओ, साडी लोकल टीम तुहाडी सिचुएशन दे हिसाब नाल तुहाडे लई सब तों वधिया पॉसिबल रेट अते डील लभण लई पूरी कोशिश करेगी. ते जे तुहानूं नवे टायर दी लोड़ है तां ओह वी मिलणगे, 4 टायर दा सैट सिर्फ 299 तों शुरू. ਹੁਣ ਸੁਣੋ AM 530 ਲਿਸਨਰ ਲਈ ਖਾਸ ਆਫਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲੇ ਫਾਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ ਆਓ, ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਂ AM 530 ਤੇ ਮੀਰਾ ਸ਼ਰਮਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੁਣਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵਹੀਕਲ ਪਰਚੇਸ ਤੇ 500 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਚਤ. ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਰ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਬੀਬੀਟੀ ਰੌਕਲੇ ਫਾਟੋ ਹੈਮਿਲਟਨ. कॉल करो 362-384-3840, दोबारा सुनो 365-384-3840, 362-384-3840. बीबीटी रॉकक्लिफ ऑटो हैमिल्टन, लोकल सर्विस, ग्रेट सिलेक्शन, ग्रेट डील्स. जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में. तो अब अगर आपने मूव होना है तो HK मूवर्स को कॉल कीजिए, कनाडा भर में आपको मूव होने में मदद करते हैं. तो आप एक बार उनको कॉल कीजिए 416-524-804, 416-524-6704. तो HK मूवर्स. अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको प्रॉपर्टी खरीदनी है किचन वाटरलू में, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड 519-546-1268-519, 546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अगर आपने किसी किस्म की भी आपको फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर चाहिए तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे जाइए। जी हाँ, टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे आपको बहुत बढ़िया सामान बढ़िया प्राइस पे मिलता है। इंटर मॉडलैंड एयरपोर्ट रोड पे उनकी एक लोकेशन है, दूसरी लोकेशन उनकी आपके लिए गल्फ में है। तो टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक .com पर जाकर आप उनके बारे में और जानकारी लीजिए और फिर अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा। 905-799-0045 पर आप उनको कॉल कर सकते हैं ऑर्डर बुक करने के लिए। 905-799-0045। या तो आप सुन रहे प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए बहुत ही प्यारा सा गाना मैं सुनाना चाहती हूँ। तो लेट्स प्ले सम नाइस म्यूजिक। मैं सोच रही हूँ पंजाबी का गाना सुनाया जाए जहाँ के फिर आपको हिंदी का गाना सुनाया जाए, क्योंकि पंजाबी के गाने हम सुनाना चाह रहे थे। तो कोशिश थी कि पंजाबी का गाना आपको सुनाया जाए। जी हाँ, तो बढ़िया सा गीत आपके लिए चुनना चाहती हूँ। तो आप का वीकेंड कैसा जा रहा है? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छा जा रहा होगा, क्योंकि अभी क्या है कि जल्दी ही जैसे श्राद्ध शुरू हो जाते हैं और फिर बाद में उसके नवरात्रे भी आ जाएंगे आपके लिए। तो इसलिए फिर आपके लिए अभी जो गणेश उत्सव है वो 13 सितंबर से शुरू हो जाएगा। तो आप 13 से 19 तक, तो फिर बहुत जगह गणेश उत्सव के लिए फिर बहुत सारी जो
2: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात से डोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 13 LED Drive Unit 9 and 10 ब्रैम्पटन, टेलीफोन 905-799-940।
1: जी हाँ, तो बात हो रही थी कि गणेश उत्सव के लिए सभी मंदिरों में बहुत बढ़िया बढ़िया गणेश जी का पूजा हर रोज पूजा की जाती है। और फिर गणेश विसर्जन के लिए राम मंदिर वाले बहुत बढ़िया बोट क्रूज कर रहे हैं। अगर आपको जाना है तो पहले बुकिंग कर लीजिएगा, उनको कॉल कीजिएगा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से, लीजिए सुनिए पंजाबी का गीत।

हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। तो ये एक रेयर सॉन्ग मैंने आपके लिए प्ले किया, उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आएगा। तो आगे भी हम आपके बहुत प्यारा आपके लिए गीत सुनाऊंगी। तो अब आपके लिए बहुत ही अच्छा सा एक और गाना मैंने चुना है, अब सुनाती हूँ, अभी भी आपके लिए जरूर सुनाती हूँ। तो पहले आपको हमारे जो स्पॉन्सर के मैसेज हैं, अगर आपने मूव होना है तो आप HK मूवर्स को कॉल कीजिए। कनाडा भर में मूव होने के लिए आपकी पूरी मदद करते हैं। तो 416-524-8004-416-524-6704 HK मूवर्स।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। उम्मीद रख रही हूँ कि जो गाने मुझे पसंद है मैं प्ले कर रही हूँ, तो उम्मीद रख रही हूँ कि आपको भी ये गाने पसंद होंगे, उम्मीद रख रही हूँ। और अगर आपको पसंद आ रहा है प्रोग्राम तो आप जरूर मैसेज कर सकते हो, बता सकते हो। और जो भाई बहन हमें बताते हैं उनका हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो हैमिल्टन वासियों

में तो शुरू हूँ सुनो AM530 लिसनर लई खास ऑफर जो तुम बीबीसी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन आओ सानू सिर्फ ये दसो मैं AM530 दे मीरा शर्मा तो तुहाडे बारे सुनिया है अते तुहानू मिलेगा तुहाडी व्हीकल परचेस ते $500 ऑफ जी हाँ $500 की सीधी बचत ता फिर देर किस गल दी अज ही विजिट करो बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन कॉल करो 365-384-3840 दोबारा सुनो 365-384-3840 बीबीटी रॉकलिफ ऑटो हैमिल्टन लोकल सर्विस ग्रेट सिलेक्शन ग्रेट डील्स जी हाँ तो अब सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार तो आइए अब आपको एक और पंजाबी का गीत सुनाती हूँ बहुत ही प्यारा सा गीत है सो 13 से 19 सितंबर तक गणेश उत्सव चल रहा है आपको बता दें

पंजाबी का और बहुत ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का है। तो ये पंजाबी गाना अपने ओरिजिनल वर्जन आप सुना है। और ये फिल्म थी, बड़ी पुरानी फिल्म थी, भी नाम उसका जक्के वाली फिल्म का नाम था। तो कभी आपको मौका मिले तो जरूर देखना, बड़ी इंटरेस्टिंग फिल्म है। उसमें आपको देखने का मिलेगा कॉस्ट्यूम कैसे थे, फिर उनकी जो बैकग्राउंड कैसे कैसे सेट की गई हैं, कमाल की फोटोग्राफी कैसे की होगी उन्होंने, लाइट्स लगी हुई हैं, तो बहुत कुछ आपको जैसे सोचने को मिलेगा कि ये उस जमाने में उन्होंने कैसा किया होगा। 60s की मेरे ख्याल ये फिल्म है। तो आइए प्रोग्राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर आप अपने घर में फ्रिज और वॉशर ड्रायर बढ़िया लेके आना चाहते हो, बढ़िया टीवी लेके आना चाहते हो, बढ़िया किचन की गैजेट्स आपको चाहिए, तो आपको जाना होगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाकर आप उनकी स्पेशल्स देख सकते हो। अभी फेस्टिव सीजन शुरू हो गया है, तो फेस्टिव सीजन में आपको अपने घर में बढ़िया बढ़िया चीजें लेके आनी है। खास करके गणेश उत्सव शुरू हो गया, तो तब .com पर जाके और फिर अपने ऑर्डर कर लीजिए 905-799-0045 9057990045। अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है, मैं यहीं पे आपसे विदा लेती हूँ। तो नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सवादा भला, हैव अ वंडरफुल वीकेंड, एंजॉय व्हाइल यू कैन। स्नो से पहले पहले आपके लिए बढ़िया मौसम अभी चला हुआ है, तो समर का एंजॉयमेंट अभी भी चल रहा है, समर चल रही है अभी भी, तो आप एंजॉय कीजिएगा। पूरी होस्ट मीरा कर सकते हो 617-640। और अगर आपको प्रोग्राम भी पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें कॉल कर सकते हो 647-773-7640। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर से।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: अपना वकील वकील ब्रिज मोहन पिछले 32 सालों तो अक्रॉस कैनेडा कार एक्सीडेंट्स लगियां गंभीर सट्टा पुलिस द्वारा लाए गए संगीन क्रिमिनल चार्जेस अते सीरियस इमिग्रेशन केसेस नाल कोर्ट कचहरियां च निजिठण दा साडा पूरा तजर्बा है। कार एक्सीडेंट्स दे विक्टिम्स ने कदे भी सट लगन अते अपनी जिंदगी बदलन लई नहीं सी आख्या, पर हुण ओ इंसाफ दी मांग करदे हन अते मैनूं इह कहिंदे होए बहुत ही माण महसूस हो रिहा है कि असीं कानूनी अदालत विच उस इंसाफ नूं प्राप्त करन च उहनां दी सहायता कर जिसते वो सचमुच ही हकदार हैं। थोड़ा अपना वकील वकील ब्रिज मोहन कॉन्टेक्ट अस एट bridgemohan.com।
1: जेएस होम इंप्रूवमेंट वालों एक वेरी गुड न्यूज, हुण तुसी उहनां कोलों वेरी वेरी बेस्ट बीम सेंट्रल वैक्यूम सिस्टम भी लै सकदे हो। सेंट्रल वैक्यूम $500 तो शुरू होंदे ने, गराज डोर ओपनर लिफ्ट मास्टर दे $350 तो, फुल गराज डोर $349.99 तो। पिछले 30 सालों तो तुहाडी सेवा विच जेएस होम इंप्रूवमेंट एक्स्ट्रा स्पेशल ऑन बिडे सिस्टम, बेस्ट सर्विस बेस्ट प्राइस 9057890333 1098 पिट रॉबर्टसन एट टोरबन क्रोल बाग प्लाजा 905-799-0333।
2: 24 घंटे 7 दिन खुला सब्जी मार्केट रेस्टोरेंट एंड ग्रोसरी स्टोर दो लोकेशंस तो सर्व कर रहे ने, सैंडलवुड एंड मैकलॉगलिन 10 लोरमेल गेट, यहाँ पहुँचो 10970 ब्रैमली रोड। वेज एंड नॉन वेज बिरयानी बाय वन गेट वन फ्री, चना पटूरा बाय वन गेट वन फ्री, फिश पकौड़ा बाय वन गेट वन फ्री, तंदूरी चिकन लेग बाय वन गेट वन फ्री, मैंगो लस्सी सॉल्ट लस्सी मिठी लस्सी बाय वन गेट वन फ्री, हर रोज फ्रेश साग ते मक्की दी रोटी। टिफिन सर्विस पिकअप अते डिलीवरी दे लई वी अवेलेबल है। दोनों लोकेशंस ते फ्रेश सब्जियां फ्रूट ते ग्रोसरी दे आइटम ते हुण आलू गोभी मूली ते प्याज आले परौंठे $2.99 दे विच, अमृतसरी कुलचा विथ चना $7.99 ते पनीर एंड मिक्स परौंठा $3.99। सब्जी मार्केट ओपन 24/7।
3: ਦੋਸਤੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨਮਸਕਾਰ, ਮਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਦਲ ਬੰਸਰਾਜ ਹੰਸ।
4: Toronto, get ready. Punjabi Virsa Radio and Television, Realtor Rav Singh, Cellular Points, A to Z Kitchen Cabinet, and Realtor Harp Garival present the

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callon to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तब व्यापार है। अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: शुक्र है।
1: 32, 55, 80
2: 98
1: एक ही गलत काउंटिंग सिखाई जाने हो।
2: काउंटिंग नहीं, ए ते 32, 55, 80 ते 98 इंच दे टीवी ने जो आज ही ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस तो आए ने। इन्हा गोल सारे हाउसहोल्ड अप्लायंसेस मिलनगे, हर ब्रांड बहुत ही बढ़िया प्राइस ते। 32 to 98 इंच दे लेटेस्ट टीवी भी अवेलेबल ने।
1: ब्रैम्पटन टीवी एंड अप्लायंसेस, 801 बोवे ड्राइव नियर चिंगोजी। कॉल 905-450-2828, 905-450-2828।
3: मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि किसी भी चीज की मकदार काफी नहीं है। तलवा से भरी हुई क्लास, शोर, इस सब बहुत ज्यादा भोजन महसूस होता है। इसकी वजह यह है कि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में 6.5 बिलियन डॉलर की कटौती की है। हमारे बच्चे बेहतर सलूक के मुस्तैक हैं। हुकूमत से कहें हमारे बच्चों में सरमायाकारी करें, क्लास साइज दुरुस्त करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की जानिब से एक पैगाम।
4: This is AM 530.

मेरी बेटी की क्लास में 33 बच्चे हैं। वो बताती है कि वहाँ किसी भी चीज की पूरी सुविधा नहीं है, भीड़ से भरी क्लास और शोर परेशान कर देता है और मदद कभी भी पूरी नहीं पड़ती। ये इसलिए है क्योंकि डग फोर्ड ने 2018 से हमारे सरकारी स्कूलों के बजट में से $6.5 बिलियन काट दिए हैं। हमारे बच्चे इससे बेहतर के हकदार हैं। आइए सरकार से कहें, हमारे बच्चों में निवेश करें, क्लास साइज ठीक करें। एलिमेंट्री टीचर्स फेडरेशन ऑफ ऑन्टेरियो की ओर से एक संदेश।

0: ही कॉल करो नीलम सेडोव नु
1: 6347 7 10 6 4 7 7 3 9 8 7 1 0।
2: मैं क्या किथे जा रही है?
3: 10 बारी क्या पिछो हाक ना मारिया करो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी चली सी।
2: ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी हुन 60,000 स्क्वायर फीट ते मूव हो गया।
4: 100 कैनेडी रोड ब्रैम्पटन, हर तरह दी ग्रोसरी ले पहुंचो। ब्रैम्पटन कैश एंड कैरी 416-700-9100।
5: प्रकार दे शीशे अते विंडो आदली रीति ग्लास एंड विंडो टेबल टॉप्स फर्नीचर ग्लास बार आदली कस्टम डिजाइनिंग भी अवेलेबल है। रीति ग्लास हुन वॉशरूम दे शावर नु शीशे दी दीवार अते डोर्स नाल बहुत ही खूबसूरत बना देंदे हन। तुसी इना दा शोरूम जरूर चेक करो। रीति ग्लास एंड विंडो 9057908335 7903335 और विजिट www.reetiglass.com।
3: हर महीने मैकेनिक नु पैसे दे देंदे हो, ट्रक खरीदे आया मैकेनिक नु गोद ले ले है।
6: ओ मैं की करा, ये पुराना ट्रक ता रोज नखरे करता है।
3: नखरे छड़ो ते सिद्धे जाओ निस्को ट्रक सेल्स ते।
7: बढ़िया हालत वाले यूज्ड ट्रक्स, ट्रक को बेचना होवे या खरीदना रेट बिल्कुल वाजब लौंदे ने।
3: फाइनेंस दी सुविधा भी उपलब्ध है,
7: मतलब जेब भी सेफ ते घर वाली भी खुश। बस फिर आज ही चलते हैं निस्को ट्रक सेल्स, टोरब्रम डेरी दे नजदीक 7055 टोरब्रम रोड मिसीसागा। कॉल 6745189999। ट्रक ऐसे के मैकेनिक भी कहेगा हुन मैं की करा।
8: Indian Fruitland, one stop for all your grocery needs.
9: ले, इको जगह तो कितने सारा कुछ मिलता है। दो चीज़ ले, एक जगह रुको, फिर अगलियां दो दी, दूसरी जगह रुको।
8: Indian Fruitland है सच्ची, one stop for all your grocery needs. सब तो बढ़िया ग्रोसरी, सब तो बढ़िया प्राइसेस से। आज ही पहुंचो, हुन Indian Fruitland दी 7वीं लोकेशन भी खुल गई है। On 25 Sandalwood Parkway, near Horanthro Street, Brampton.
10: Culture of Punjab, serving the South Asian community in and around the GTA. For exciting packages, promotional offers, and inquiries, please call 416-677-0609. That's 416-677-0609. Culture of Punjab.
11: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world.

0: हेलो
1: हेलो कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।
2: हाँ जी कटारिया टूर एंड ट्रैवल।
1: इंडिया दी टिकटा चाहिदियां सी।
2: ओ इंडिया की तुसी जित्थों मर्जी दी टिकटा ले लो, बस दसो की टिकटा कदों दी चाहिदियां ने। ते हाँ, स्पेशल टूर पैकेजेस ते हनीमून पैकेजेस भी साडे कोल अवेलेबल ने।
1: भरोसेमंद सर्विस ते सब तो वधिया रेट्स लई इक्को इक ना, कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल। बुकिंग लई अज ही कॉल करो 9056781200 9056781200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल।

0: हाँ जी हरमन जी।
1: अहे हाले तई कोई फर्क नहीं पिया।
0: फर्क जे पै गया दिलां विच नी फिर तू रोवेंगी।
1: मैं क्यों रोऊंगी?
0: ए फर्क नी पैना चाहिदा फिर के दे कपड़े धोवेंगी।
1: दिल दा कपड़ा ना की सबन।
0: मैं तां रंग दी गल करदा वी भाई, चंगा साबण वरत्या करो।
1: हाँ।
0: माड़े साबण रंग उड़ जांदा।
1: ओ जेड़ा गुरप्रीत संधा वाले वरतदा छोकरा मारका ओ नहीं वरतना।
0: हाँ जी।
1: अच्छा जी, ये कपड़ियां दे रंग उड़े दा ही नतीजा कि अज इदा दा हो गया।
0: हाँ जी
1: हाँ जी
0: हाँ जी।
1: चलो मैं तुहानू फिर अज एक गल सुनानी आ।
0: दसो।
1: कहंदे कि जेड़ियां बादल सरकार दियां नीतियां ना।
0: बादल सरकार दियां नीतियां, पहिलां मैनूं ये दसो भी है केड़ियां।
1: चलो जेड़ियां भी आ।
0: ना इदां थोड़ा हुंदा, जेड़ियां केड़ियां दा की मतलब है?
1: देखो उन्हां ने
0: समझाओ ना पहलां।
1: की समझावां
0: भाई, साडे पल्ले तां पाओ। केड़ियां नीतियां ने
1: उन्हां ने जो किया है पहलां ओह गल तां सुन ला।
0: सुन लांगे, पहलां गल तां दसो भी नीति केड़ी है।
1: मैनूं नहीं पता।
0: अच्छा
1: धर्मेंद्र
0: भाई दा मुंडा
1: वड्डे आला।
0: वड्डे आला
1: हां।
0: वैसे मैनूं पता लग गया भी सनी देओल कोलों क्यों मशहूरी करवानी है।
1: क्यों?
0: ओ इस करके कहंदे भी पंजाब च पानी दा थल्ले चली गई।
1: अच्छा।
0: नलके पानी कढ़दे नी, नाले नलके पटा लांगे, नाले प्रचार करा लांगे।
1: एक होर भी है लिस्ट च।
0: ओदी लिस्ट दा फेस ना हो, पहला गाना सुनना ही नहीं तां मैं रो पैणा जी।

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट